0: 晚上八点向联台现在由高聚报道新闻。财政司司长陈茂波表示，当越来越多硬科技企业选择在香港进行首次公开招股或第二上市，企业也能够在香港监管框架与市场纪律中锤炼出更强的国际竞争力。相关互动是正是香港作为超级联系人及超级增值人的作用。陈茂波在网志表示，内地科技企业不少选择以香港为国际化发展的策略适应地，是对香港国际投资者网络及国际化平台的信任，也是对香港作为中国科技创新与全球资本连接点的认可。他认为，香港的制度优势和国际化优势与国家的科创优势和产业优势相互赋能，在全球科技创新的竞争与合作中有着无可替代的独特位置。丽景村日前有一对分别70和78岁的夫妇在单位内昏迷，两人送院后，78岁有长期病患的女子证实死亡。当局计划扩展大数据筛查范围，以识别和支援未满80岁但有照顾需要的全长者户，安排关爱队提早探访。劳工及福利局局长孙玉汉在一个电视节目表示，初步会探讨扩大支援对象到60多到79岁年龄层人士，形容这个群组属于青老，但若其中一人有长期病患并需要长时间照顾，风险会较高，但具体如何划线仍有待科学观察。孙玉汉又指，将与医管局研究哪类长期病患的风险较高，初步认为若全长者户中包含认知障碍症个案，应获优先处理。屯门一对父子涉嫌袭击两名交通督导员被捕，警方在中午约12点接报，两名交通督导员在三圣村巡逻时发现一辆私家车，怀疑违例泊车，上前发出告票。期间，一名31岁男子及其61岁父亲先后将告票掷向一男一女交通督导员。两名交通督导员没有表面伤，清醒，被送往屯门医院检查。案件由屯门警区刑事调查队第三队跟进。根据美国和伊朗停战谅解备忘录进行的美伊技术性谈判，今天稍后在瑞士中部夏瓦尔登州的比尔根山举行，双方代表团均已抵达当地。瑞士外交部当地星期六深夜在社交平台发文，欢迎伊朗代表团抵部，至伊朗代表团正在前往谈判举行地点比尔根山，此行旨在落实美伊谅解备忘录。伊方代表团成员据报包括议长卡里巴夫及外长阿拉格奇。美国副总统曼斯也在当地星期天清晨抵达瑞士埃门空军基地，准备出席谈判。曼斯在出发前说，预计在瑞士停留1到2天，希望谈判在伊朗核计划、黎巴嫩战线停火等问题上取得进展。斡旋方巴基斯坦总理夏巴兹和陆军参谋长穆尼尔也会参与美伊谈判。新华社报道，比尔根山区域戒备森严，瑞士当局增派大约2000名军人戒备。财经消息， 天气方面，副热带高压脊正为中国东南部带来普遍晴朗天气，在晚上八点，强烈热带风暴米克拉集结在马尼拉之东北偏东约1070公里，预料向西北偏西移动，时速约22公里，横过菲律宾以东海域并逐渐增强。本港地区今晚及明天的天气预测，大致天晴，明早最低气温约28度，日间酷热，市区最高气温约33度，新界再高1-2度，吹和缓南至西南风。展望随后1-2天大致天晴，日间酷热，本周后期有几阵骤雨，现时路德室外气温30度，相对湿度76%，请注意酷热天气警告现正生效。向电台新闻报道完毕。
1: 听 AM 六二一，
2: 听生活，听精彩。
1: 听香港电台普通话台
2: AM 六二一，香港电台普通话台，谱出生活精彩。
3: 行政长官正带领特区政府编制首个香港5年规划，5年规划与你我息息相关。香港在未来5年将进一步提升竞争力，巩固和拓展优势，把握国家发展机遇，经济发展更迅速，生活更美好。行政长官已指示政治及内地事务局展开公众咨询，欢迎你提出意见，一起勾画未来5年的蓝图。
4: 由而家到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
5: 从现在到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
6: From now to 11 p.m., you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service.
7: हाम्रो समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौं आभासहरु समेटिएको एउटा मीठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्नेछौँ उहाँहरूको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बाँच्नुभएका अनुभवहरू, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकुददेखि आजको आधुनिक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरू सुन्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0, यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समानताको सन्देश दिनु हो।
8: Dedicated to every daughter of our ethnically diverse community, a radio program celebrating the voices and journeys of daughters from Hong Kong's ethnically diverse community. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0. Hamra Choriharu, Our Daughters 2.0 aims to inspire positivity and promote equality in society by sharing the powerful stories of women who are shaping a better future for all.
7: श्रोता मित्रहरू नमस्कार। छोरीहरूको साहस, सपना र उपलब्धिहरूले समाजलाई समानता, सम्भावना र उज्यालोतर्फ डोराउँछ भन्ने विशेष अनुभूति सहित तयार भएको रेडियो कार्यक्रम Our Daughters 2.0 श्रृंखला स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मिरिना राई। यस कार्यक्रमलाई कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट ब्रडकास्टिङ सर्भिस CIBS द्वारा उत्पादन गरिएको हो। यस कार्यक्रमले महिला नेतृत्वको उजागर गर्दै छोरीहरूको योगदान, सम्मान र भविष्यको सम्भावना बारे समाजमा जागरूकता फैलाउने उद्देश्य राखेको छ।
8: Dear listener, welcome to Hamra Chori Haru, Our Daughters 2.0, where we celebrate the remarkable achievement of women from Hong Kong's ethnically diverse communities. These trailblazers have made meaningful contributions across fields like education, health, journalism, entrepreneurship, sports, and the fast-evolving world of artificial intelligence, AI. Through their real-life stories of struggle, resilience, and triumph, we uncover how they have shattered gender barriers and the stereotypes. This program inspires the next generations of girls to embrace confidence, courage, and vision. It champions equal opportunities, inclusion, and lasting positive change in our society. By amplifying these voices, we highlight the vital role of women's leadership and affirm the immense value, respect, and potential of every daughter in our community.
7: यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरी तथा महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुर्याएको योगदानहरूलाई उजागर गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यमशीलता, खेलकुददेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म सक्रिय महिलाहरूका वास्तविक र प्रेरणादायी कथा मार्फत उनीहरूको संघर्ष, क्षमता र उपलब्धिहरूलाई समाज सामु प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक भेदभाव र पूर्वाधारहरूलाई चुनौती दिनु यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य हो। साथै हाम्रा छोरीहरू आवर डॉटर्स 2.0 कार्यक्रमले नयाँ पुस्ताका छोरीहरूलाई आत्मविश्वासी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै समान अवसर, समावेशी सोच र सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश फैलाउने उद्देश्य राख्दछ। यस कार्यक्रम मार्फत